नमस्कार श्रोताओं, आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है और आप हमने सुन रहे हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज सन 2026 सितंबर महीने की 20 तारीख व दिन है रविवार। श्रोताओं, अब आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। अब से लेकर रात्रि 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम कक्ष में उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री थुतन चाशी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित रहेंगे अभियंत्र के सहायक श्री हेमंता सुर्ग्यारी, श्री लम सरिंग और श्री तानिंग तकू, ट्रांसमीटर में उपस्थित रहेंगे अभियंत्र के सहायक श्री न्यूटन बोरा और श्री अशित बर्मन, मनपा में उद्घोषक श्री कुंचो सांगी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका किसांग हामू और आप सभी का हमारे आज के इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत करती हूँ।

आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित मिड डे न्यूज तथा दोपहर समाचार 2:15 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Puducherry and Telangana today. And with that, we end the midday news.
1: दोनों वायु सेनाओं के बीच
2: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौसी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नगोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। भारत महिला क्रिकेट के फाइनल में शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। एक रिपोर्ट।
3: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य के विषय पर आयोजित सम्मेलन ने अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्य प्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पर्यावरण जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई। इनमें नीतियां बनाने, उन्हें लागू करने और उनका पालन सुनिश्चित करने में आने वाली कमियों पर भी विचार किया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बेहतर बनाने और विभिन्न संस्थानों के बीच सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 14 राज्य इसमें भाग लेंगे, जबकि 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी आमंत्रित किया गया है। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूलन जल प्रबंधन से जुड़ी नवीन तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान 22 से 24 सितंबर तक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन भी होगा। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देशभर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश भर के युवा शामिल हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। नशा मुक्त पंजाब यात्रा के तीसरे चरण का शुभारंभ आज विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने फजिलका के सादिकी सीमावर्ती क्षेत्र से किया। उन्होंने राज्य भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और अन्य पार्टी नेताओं के साथ आसफ वाला युद्ध स्मारक पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस यात्रा को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।
4: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
2: श्री मेघवाल ने नशा प्रभावित परिवारों के सदस्यों से भी मुलाकात की और उनके दुख में भागीदार हुए। इससे पहले शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पठानकोट के सीमावर्ती जिले से यात्रा का शुभारंभ किया था। यह यात्रा पंजाब की 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशीली दवाओं की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी

0: 117 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल करना है ताकि नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदला जा सके। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत तेलंगाना में कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन इस अभियान में भाग ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल के अंतर्गत आज हैदराबाद में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया।
1: देशव्यापी अभियान के तहत आज हैदराबाद के नेकलेस रोड पर नशा मुक्त भारत साइकिल रैली आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने इस रैली में हिस्सा लिया और नेकलेस रोड पर युवाओं और साइकिल चालकों के साथ साइकिल चलाई। युवाओं पर नशीले पदार्थों के गंभीर असर का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रतिभागियों को नशा न करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सांसद के लक्ष्मण ने कहा कि स्वस्थ युवा ही एक मजबूत और विकसित भारत के निर्माण का आधार है। उन्होंने सभी से इस अभियान में शामिल होने की अपील की। हैदराबाद से गोपागोनी सप्तगिरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज प्रस्तुत है बिहार के किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया के लाभ पर हमारी विशेष श्रृंखला।
2: बिहार में इम्पोर्टेड नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत दिसंबर 2015 से की गई। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार इसके इस्तेमाल से राज्य में अरहर और सोयाबीन सहित दलहन फसलों की वृद्धि में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अन्य फसलों में करीब 10% की वृद्धि हुई है। किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार विभिन्न प्रदर्शन और विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा दे रही है। पैक्स और अन्य खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। और कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक भी किसानों को इसके उपयोग और लाभों की जानकारी दे रहे हैं।
3: हम लोग राज्य सरकार के स्तर पर प्रत्येक डेमोंस्ट्रेशन में जो भी हमारे किसानों के मध्य यदि हम फील्ड में किसी उपज के प्रदर्शन करते हैं या केविके के माध्यम से कोई काम कर रहे होते हैं तो आम किसानों के बीच इसकी पहुंच अधिकाधिक सुलभ हो उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हम लोगों ने यह तय किया है कि जितने भी हमारे डेमोंस्ट्रेशन चाहे वो खाद्य बीज की योजना राज्य सरकार के स्तर पर किसानों के बीच जाएगी उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं।

0: करते हैं या केवीके के माध्यम से कोई काम कर रहे होते हैं, तो आम किसानों के बीच इसकी पहुंच अधिकाधिक सुलभ हो उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हम लोगों ने यह तय किया है कि जितने भी हमारे डेमोन्स्ट्रेशन, चाहे वो खाद्य बीज की योजना राज्य सरकार के स्तर पर किसानों के बीच जाएगी, उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हमारे राज्य सरकार के जितने भी किसान हैं उन तक इसकी सुलभता हो सके तो पैक्स एवं अन्य रिटेलर के माध्यम से एक निर्धारित मात्रा इसकी उपलब्ध रहती है।
1: कृषि विभाग के अनुसार किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के तहत नीम कोटेड यूरिया के साथ अन्य उर्वरकों और जैविक खादों के इस्तेमाल के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
4: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारतीय वायुसेना जोधपुर वायुसेना केंद्र पर जापान वायु आत्मरक्षा बल के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर रक्षक 2026 का संचालन कर रही है। एक रिपोर्ट।
5: 14 दिवसीय अभ्यास मंगलवार को समाप्त होगा। ये अभ्यास उन्नत परिचालन मिशनों और दोनों वायु सेनाओं के बीच व्यापक पेशेवर समन्वय पर केंद्रित है। भारतीय वायुसेना स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस, ASU-30 MKI और रफाल सहित विभिन्न प्रकार के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों के साथ भाग ले रही है। जापान AF-2A लड़ाकू विमान के साथ अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। अभ्यास वीर रक्षक 2026 सामरिक दक्षता और एरोस्पेस चालन तालमेल को बढ़ाकर दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
2: ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं हो जाती और अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं करता। ईरान की समाचार एजेंसी के अनुसार ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबाफ ने कहा कि ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल करता रहेगा।
6: ईरानी अधिकारियों ने एक बार फिर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तभी खोला जाएगा जब अमेरिका उनकी शर्तें पूरी करेगा। इनमें लड़ाई खत्म करना और ईरानी शिपिंग पर लगे प्रतिबंधों में बदलाव शामिल है। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही अभी भी काफी सीमित है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि पिछले 2 महीनों में उसने 2000 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को वहां से गुजरने में मदद। वहीं हूदी हमलों के बीच अमेरिका ने वेस्ट एशिया के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी किया है और कहा है कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दुबई से आकाशवाणी समाचार के लिए मनीष शिवा।
2: बांग्लादेश के ढाका में आज कई बम धमाके हुए। कल भी स्थानीय पुलिस थाने के बाहर भी इसी तरह के विस्फोट हुए थे। इस घटना में एक रिक्शा चालक घायल हो गया। ढाका में कल शाम अलग अलग घटनाओं में 3 बसों में आग लगा दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: ये आकाशवाणी है। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। इन खेलों के बारे में और अधिक जानकारी दे रही हैं जागृति शर्मा।
8: जापान एशियाई खेलों में भारत की एला वेनेल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने टीम के रजत पदक के बाद अपना व्यक्तिगत रजत पदक जीता है। 2025 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता वलारिवन ने फाइनल में 252.4 अंक हासिल किए। जापान की हिनाता ताइची ने रिकॉर्ड 253 अंकों के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत की एला वेनेल, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम

0: स्पर्धा का पहला रजत पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। जापान को कांस्य पदक मिला। इस बीच सुचिका तारियाल ने इतिहास रच दिया है। वे एशियाई खेलों में महिलाओं के पारंपरिक 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इस जीत के साथ सुचिका सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और मार्शल आर्ट्स में भारत का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया है। भारत एशियाई खेलों के महिला T20 क्रिकेट मैच के फाइनल में पहुंचा। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 114 रन से हराया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। भारत के 196 रन के जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 16वें ओवर में 81 रन पर ही सिमट गई। शेफाली वर्मा ने सफेद गेंद का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर इतिहास रचा। शेफाली एशियाई खेलों में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई हैं। वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड की दिग्गज खिलाड़ी सूजी बेट्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। फाइनल मैच मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंदकर शानदार शुरुआत की। दीपिका सहरावत ने 8, इशिका चौधरी ने 3, जबकि लाल थंत लुआंगी और नेहा ने 2-2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में भी बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौजी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट के फाइनल में भारत पहुंचा। शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे लामा करसंग और साथियों से चंद बोध भक्ति गीत। श्रोताओं, तो लीजिए पेश है कार्यक्रम वंदना।

Bye.

Jim,

Yeah.

Dear my God.

sa de we jo and all to we ye we ya dambe

0: Ajahn. L'Ajahn Bharan Dorzar Senyum.
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लामा कर संघ और साथियों से चंद बोध भक्ति गीत। इसके साथ ही भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दोपहर के 3 बजे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं अटल पेंशन योजना पर एक संदेश।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: श्रोताओं, अब प्रस्तुत है विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। आज इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे चंद अक्का गीतों का। मैलाई सिद्सो अप्पी हेमा न्यूम बजंता और जिलन के युगल आवाजों में श्रोताओं तो लीजिए पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे चंदा अका गीतों का। मैला सिद्सो, हेमा निजुम, बजंता और जिलन के युगल आवाजों में। श्रोताओं, तो इसी के साथ ही विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दोपहर के 3:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम मेरी बात। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे दोरजी खांडू राजकीय महाविद्यालय तवांग के 5वें सत्र के छात्र कुमारी मीना रत्न से महिला शक्तिकरण क्यों आवश्यक है विषय पर उनका विचार। श्रोताओं, तो लीजिए पेश है कार्यक्रम मेरी बात।
1: आकाशवाणी तवांग के कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का नमस्कार। मेरा नाम मीना रत्ना है और मैं दोरजी खांडू राजकीय महाविद्यालय तवांग में 5वें सत्र की विद्यार्थी हूँ। मैं अभी आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में हूँ और कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन्स एम्पावरमेंट के विषय पर अपने विचार आपके साथ साझा करना चाहूँगी। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक सोच है, एक बदलाव है और एक जिम्मेदारी भी। महिलाएं हमारे समाज के आधा हिस्सा है। अगर आधी आबादी को पीछे छोड़ दिया जाए तो देश कभी पूरी तरह से आगे बढ़ नहीं सकता। इसीलिए महिलाओं का स्ट्रॉन्ग, एजुकेटेड और इंडिपेंडेंट होना हम सब के लिए जरूरी है। सबसे पहली बात शिक्षा। जब एक लड़की को पढ़ने का मौका मिलता है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। वो बेहतर डिसीजंस लेती है, अपने परिवार को स्ट्रॉन्ग बनाती है और समाज में एक पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट कर देती है। एक एजुकेटेड वुमेन अपने हक को जानती है और दूसरों को भी जागरूक बनाती है। दूसरी बात, काम और आर्थिक स्वतंत्रता। महिलाओं का काम करने का, जॉब लेने का, बिजनेस शुरू करने का पूरा अधिकार है। जब महिलाएं अर्न करती है तो न सिर्फ वो अपना आत्मविश्वास बढ़ाती है बल्कि उनका परिवार भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होता है। रिसर्चर्स भी कहते हैं कि जहां महिलाएं का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है वो देश और तेजी से तरक्की करता है। तीसरी बात, सुरक्षा और सम्मान। महिला सशक्तिकरण का मतलब ये भी है कि हर महिला को सुरक्षित महसूस हो, चाहे वो घर हो, स्कूल हो या काम की जगह। जब एक महिला स्ट्रॉन्ग होती है तो वो अन्य हिंसा और भेदभाव के खिलाफ खड़ी हो सकती है और उसी की आवाज को कोई और महिलाओं को बोलने की हिम्मत देती है। चौथी बात, सोच की बदलाव। हमारे समाज में अभी भी कई स्टीरियोटाइप्स हैं, जैसे कि लड़कियां ये नहीं कर सकती।

0: लड़किया का काम बस घर तक है। हमें इन गलत सोचों को तोड़ना होगा। लड़किया स्पेस में जाती है, आर्मी ज्वाइन करती है, बिजनेस चलाती है और देश को लीड भी कर सकती है। उन्हें सिर्फ सपोर्ट और मौका चाहिए। सबसे जरूरी बात, महिलाओं को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार। हर महिला को ये हक है कि वो अपने सपने चूज करे, अपनी लाइफ की डिसीजंस ले और बिना डर के अपनी पहचान बनाए। महिलाएं पहले से ही स्ट्रांग होती है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें रोके नहीं बल्कि उनके साथ खड़े रहिए। आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है बल्कि पूरी समाज की प्रोसेस के लिए जरूरी है। जब एक महिला आगे बढ़ती है तो उसके साथ पूरी परिवार, पूरी समाज और पूरी देश आगे बढ़ती है। इसीलिए हम सब का फर्ज ये है कि हम महिलाओं को एनकरेज करें, उनकी आवाज का सम्मान करें और हर जगह उनके हक के लिए स्टैंड लें। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे दोरजी खांडू राजकीय महाविद्यालय के पांचवें सत्र के छात्र कुमारी मीना रत्न सिंह, महिला सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है विषय पर उनका विचार। श्रोताओं, तो इसी के साथ ही हमारा दैनिक कार्यक्रम मेरी बात अब यहीं पर समाप्त होता है।
2: हर जिले की अपनी एक पहचान है, हर परंपरा, हर अनसुनी कहानी, हर छिपी हुई मंजिल भारत का एक अनमोल रत्न है। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल जो देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स और हर जिले की अनूठी पहचान को राष्ट्रीय मंच देती है। शुरुआत 2 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से, अब आपकी कहानी भी पूरे देश तक पहुँच सकती है। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर वेव्स OTT इंस्टॉल करें, खुद को रजिस्टर करें और माई वेव्स सेक्शन के प्रोग्राम्स में जाकर जेम्स ऑफ इंडिया चुनिए, अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करिए और अपनी एंट्री सबमिट कर दीजिए। चुनिंदा कहानियों को मिलेगा वेव्स OTT और प्रसार भारती के राष्ट्रीय मंच पर स्थान, क्योंकि भारत की असली पहचान सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि उसके गांवों, कस्बों और जिलों की उन कहानियों में बसती है जिन्हें दुनिया तक पहुंचने का इंतजार है। अगर आपके पास अपने क्षेत्र की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, स्थानीय परंपराओं, प्रेरणादायक व्यक्तित्वों या अनसुनी कहानियों को दुनिया के सामने लाने का जुनून है तो यही है सही अवसर। आइए अपने जिले की पहचान को एक नई उड़ान दें और सिर्फ पहचान ही नहीं, आपके हुनर को मिलेगा सम्मान भी। जिला स्तर पर 50,000 रूपए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर 2,00,000 रूपए और राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक के पुरस्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर क्रिएटर की अपनी कहानी, हर कहानी एक राष्ट्रीय मंच की हकदार।
1: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबांग केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 2:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है नारियों पर आधारित कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम नारी संगीत का पहला गीत आइए आनंद लेते हैं। गुड बाय फिल्म से अमित त्रिवेदी की आवाज में सवानंद किरकिरे के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है स्वयं अमित त्रिवेदी ने।

अगला गीत का आइए आनंद लेते हैं रॉय फिल्म से, मीट ब्रदर्स और कनिका कपूर की युगल आवाजों में कुमार के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है मीट ब्रदर्स ने।

ओम शांति ओम फिल्म से आया बाना लेते हैं के की आवाज में यह गीत, और इस गीत के गीतकार एवं संगीतकार है विशाल ददलानी।

श्रोताओं, इस वक्त दबाने ले रहे हैं कार्यक्रम नारी संगीत के अंतर्गत चंद हिंदी फिल्मी गीतों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। हमारे इस कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए आइए आनंद लेते हैं लेडीज वर्सेस रिकी भाल फिल्म से शिल्पा राव की आवाज में यह गीत। इस गीत के गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य तथा संगीतकार हैं सलीम सुलेमान।

वीर जारा फिल्म से आइए बाना लेते हैं लता मंगेशकर की आवाज में यह गीत। जावेद अख्तर साहब के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है मदन मोहन ने।

टाइगर जिंदा है फिल्म से आइए गाना लेते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत ज्योति नुरान की आवाज में। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है विशाल शेखर ने।

0: टाइगर जिंदा है फिल्म के इस गीत के साथ ही नारियों पर आधारित कार्यक्रम नारी संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 4 बजे हैं। अब प्रस्तुत है युवाओं के लिए कार्यक्रम युवा वाणी। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे किचिंगा कल्चरल ट्रुप के चंद सदस्यों से बातचीत। विषय है किचिंगा कल्चरल ट्रुप के गठन के उद्देश्य, अब तक की उपलब्धियां एवं भविष्य की योजनाएं। श्रोताओं इनके साथ बातचीत कर रहे हैं सुश्री दोर्जी ड्रेमा। श्रोताओं तो लीजिए पेश है कार्यक्रम युवा वाणी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित हमारा मासिक कार्यक्रम युवा वाणी में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हमारे साथ है आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में किचिंगा कल्चरल ट्रूप के कुछ सदस्य। किचिंगा कल्चरल ट्रूप जो हमारे तवांग के बहुत ही लोकप्रिय कल्चरल ट्रूप है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत होने से पहले मैं चाहूंगी कि हमारे जो आज के विशेष मेहमान हैं वे अपनी परिचय आपको दें। सबसे पहले आप अपने नाम और आपने स्कूलिंग कहाँ से किया इस बारे में हमारे श्रोताओं को एक एक करके बताइए।
2: दिले, मेरा नाम लोपसांग सदर है और मैं किचिंगा बस्ती में रहता हूँ। और मेरा जो स्कूलिंग है, जो प्राइमरी लेवल है, वो मैं टाउन सेकेंडरी स्कूल तवांग से किया है। उसके बाद जो मेरा हायर सेकेंडरी लेवल जो है, हायर सेकेंडरी स्कूल तवांग से किया है।
1: जी, जी।
2: उसके बाद जो मेरा कॉलेज का जो है वो यहीं पे तवांग में दोर्जी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज में किया है। और मैं ये किचिंगा कल्चर ट्रूप का सेक्रेटरी हूँ। थैंक यू।
3: राशि दिले, मेरा नाम तेंजिन देदुल है और मैं लव विलेज से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना प्राइमरी एजुकेशन सैनिक स्कूल गोलपरा असम से किया हुआ है और जो मेरा प्लस टू एजुकेशन है मैंने यहाँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तवांग से किया है। और अभी मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर में दोर्जी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग में

0: पढ़ता हूँ।
1: तशी दिलेक, मेरा नाम है नूर बुछटन और मैं भी केचिंगा में रहती हूँ। और मैंने अपने स्कूलिंग गवर्नमेंट टाउन सेकेंडरी स्कूल तवांग एंड गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल तवांग से किए है। मैं अभी दोरजी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ।
2: ताशी दिले, मेरा नाम उर्गेन लामू है, दिल्ली गांव से हूँ और मैंने अपना स्कूलिंग विवेकानंद केंद्र विद्यालय कितपी तवांग से किया और मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल तवांग से किया। मैंने अपना ग्रेजुएशन दोरजी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग से किया है।
3: जी हाँ श्रोताओं, ये तो रही हमारे अतिथियों का परिचय। श्रोताओं, आज हम इनके साथ केचिंगा कल्चरल ग्रुप से जुड़े हुए बहुत सारे चर्चा करेंगे और हर जानकारियां आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं लबसंग सदर जी से जानूंगी कि केचिंगा कल्चरल ग्रुप की गठन कब हुई थी और इसके उद्देश्य क्या क्या है।
4: जी, केचिंगा कल्चर ग्रुप जो है 2014 में इसका गठन हुआ था। और इसका जो मेन एम जो था कि हमारा जो यहाँ पे जो जितना भी यूथ्स हैं, अपना जो रिच कल्चर है उसको प्रिजर्व, उसके बाद इसको डीपली जानो, इसलिए कल्चर ग्रुप एक जिसमें हम लोग अपना जो डांस है, उसके बाद जो पहले का जो हमारा लोकल सॉन्ग होता था, तो इन सबके बारे में और जानकारी देने के लिए और जो हमारा जितना भी ऑडियंस है सभी को, मतलब हमारा जो केचिंगा कल्चर ग्रुप है इनका जो आर्टिस्ट का जो टैलेंट है वो दिखाने के लिए। तो केचिंगा कल्चर ग्रुप जो गठन होने से पहले केचिंगा वेलफेयर एसोसिएशन, एक हमारा जो केचिंगा का एक एसोसिएशन है, तो उसमें जो है मैं असिस्टेंट कल्चर सेक्रेटरी मुझे दिया गया था। तो विद ड्यू डिस्कशन विद ऑल द मेंबर्स, उन्होंने बोला कि हमारा जो रिच कल्चर है तो इनको थोड़ा डिस्प्ले करना चाहिए। तो इसको देखते हुए, क्योंकि हमारा जो चेयरमैन है तेंजिन लेंडुप सर, जिसको हम लोग पुंगु सर बोलते हैं, तो उन्होंने कहा है कि हमारा जो ये कल्चर है बहुत रिच है, क्योंकि आजकल का जो जमाना में सब लोग अपना जो वेस्टर्न ड्रेस होता है या मॉडर्न ड्रेस होता है तो वो सबको लेके जा रहे हैं, तो हमारा जो हमारा ट्रेडिशन है उसको जो जी, तो उसको देखकर हमारा जो एसोसिएशन है, तो उन्होंने एक ऐसा डिस्कशन करके हमारा जो केचिंगा कल्चर ग्रुप, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। उसके बाद जो मैं हमारे चेयरमैन सर तेंजिन लेंडुप सर को भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो है यहाँ पे तवांग में कहीं भी जब कुछ प्रोग्राम होता है या फंक्शन होता है तो सबसे पहले हमें अपॉर्चुनिटी दिया है, जिसके कारण आज हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छा डांस परफॉर्मेंस एंड सॉन्ग हम लोग अभी परफॉर्म कर पा रहे हैं।
3: जी, तो केचिंगा कल्चरल ग्रुप को गठन हुए 10 साल हो चुके हैं ना, 10 साल से ज्यादा हो चुके। जी, तो मैं अगला सवाल रेदुल जी से करूंगी कि फिलहाल केचिंगा कल्चरल ग्रुप में आप कितने सदस्य हो और आप जब भी कहीं भी परफॉर्म करते हो किसी भी कार्यक्रम में तो क्या हर सदस्य सक्रिय रहते हैं, यानी एक्टिव रहते हैं।
5: जी, ऐसा देखा जाए तो अभी हमारे जो केचिंगा कल्चरल ग्रुप है उसमें कुल मिलाकर हमारे 39 आर्टिस्ट ऐसे हैं जो सारे अभी यूथ ही हैं और कोई अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर चुके हैं या तो अभी अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो जब भी हमारा ऐसा परफॉर्मेंस होता है या किसी प्रोग्राम पे हमें जब इनवाइट करते हैं हमारे अपने ट्रेडिशन को दर्शाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि सब फ्री होते हैं, एक्टिव होते हैं, क्योंकि सब स्टूडेंट और अपने स्कूलिंग और ग्रेजुएशन कंप्लीट कर अभी अपने फर्दर स्कोप को अचीव करने में व्यस्त है, तो जो आर्टिस्ट फ्री होते हैं सिर्फ हम उन्हीं को कहते हैं, बाकी से इतना फोर्सफुली नहीं है, जो हम फ्री होते हैं सिर्फ हम वही सभी परफॉर्म करते हैं।
3: जी, और मेरा अगला सवाल नरबू छटन जी आपके लिए है कि आप लोग जब किसी भी कार्यक्रम में परफॉर्म करते हैं तो उस समय किस तरह के परफॉर्मेंस प्रदर्शन करते हैं और अपने परफॉर्मेंस के लिए किस तरह से फीस लेते हैं।
1: केचिंगा कल्चर ग्रुप है ना, ये जो हम लोग बाहर तरफ लेके जाएगा, जो भी हम लोग नाचेगा, जो भी परफॉर्म देगा वो हम लोग मुनपा खलकतंग तिरंग ये सब गाना में देते। और उस दिन लास्ट ईयर अपाटानी का फेस्टिवल हो रहा था, तब हम लोग ने वो अपाटानी खुद का कल्चर को वहां में शोकेस किया था। तो हम लोग ऐसे नहीं है कि लाइक हम लोग से मुनपा कल्चर को हम लोग आगे बढ़ा रहे, हम लोग अपना पूरा अरुणाचल का कल्चर पूरा को आगे बढ़ा रहे, क्योंकि हम लोग पूरा अरुणाचल एक ही पूरा यूथ एक ही जुट करके करते, तो इसलिए हम लोग अपना सब कल्चर को आगे बढ़ा के लेके जाते, जिन अपना मुनपा कल्चर को ज्यादा इम्पोर्टेंस देके आगे बढ़ाते।
3: जी, और फीस किस तरह से चार्ज करते हो।
4: तो मेनली हमारा जो कहीं भी परफॉर्म होता है या कहीं पे फंक्शन होता है तो उसमें हम लोग मेनली जो है अफोर्डेबल प्राइस, जैसे कि 10,000 to 15,000 हम लोग का फीस चार्ज करते हैं, क्योंकि एस यू ऑल नो कि हमारा जो यहाँ पे जो आर्टिस्ट है वो सब स्टूडेंट है, तो उनको भी अपना जो मेहनत का है तो उनको भी मतलब देने के लिए, तो हम लोग फिक्स प्राइस हम लोग इतना एक्टिव करते हैं।
3: जी जी, और जिस तरह से हमारे चर्चा हुए थे कि हमारे अरुणाचल प्रदेश जो है संस्कृति और परंपरा से समृद्ध है और यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन होते हैं, विशेष रूप से हमारे तवांग जिला में, सरकारी हो या गैर सरकारी। और आप तो कलाकार हैं, आपको अच्छी तरह से पता होंगे कि किसी भी कार्यक्रम में गीत

0: और नृत्य के बिना वो कार्यक्रम अधूरे ही रह जाते हैं। तो अगर किसी भी कार्यक्रम में आपको न्योता देना चाहे तो किस तरह से हम आपसे संपर्क करें?
1: जी, हमारा जो किचंगा कल्चर ट्रूप है, तो इनको मतलब इन्फॉर्म या कॉन्टेक्ट करने के लिए हमारा जो फेसबुक में भी एक पेज है, उसके बाद इंस्टाग्राम में भी पेज है किचंगा कल्चर ट्रूप करके। तो मेनली जो है उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8974010703। तो इसमें कॉन्टेक्ट करके आप हमारे जो डांस ग्रुप है तो उसको आप लोग इनवाइट कर सकते हो कहीं भी फंक्शन में।
0: जी, और जैसे कि मैंने शुरुआत में कह दी कि किचन का कल्चरल ट्रूप जो है हमारे तवांग के एक बहुत ही लोकप्रिय कल्चरल ट्रूप में से है, और आप हर बार जब भी हम देखते हैं आपके परफॉर्मेंस में कुछ न कुछ नए देखने को मिलता है। हम जानना चाहेंगे कि आप 39 मेंबर्स फिलहाल किचन का कल्चरल ट्रूप में है, तो अब तक किसी ने म्यूजिक कोर्स किए या नहीं? रेदल जी, आपसे जानना चाहूंगी।
2: जो हमारा ऐसा पार्टिकुलरली किसी ने कोर्स नहीं किया है ऐसे वोकल या कोई स्पेसिफिक चीज डांस या ऐसा जो होता है जो हमें कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, तो ऐसा स्पेसिफिकली किसी ने किया नहीं है। बट हमें बीच में जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स है जो हमें हमारे एक्स MLA श्री सिंगटाशी जी ने हमें स्पॉन्सर किया था, तो वो जब हमें ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स मिले थे तो हमें सिखाने के लिए जो मिपा से आर्टिस्ट थे, जो सीनियर आर्टिस्ट थे, वो आए थे हमें सिखाने को, और उन्होंने हमारा क्लास लिया था इन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। तो वो क्लास एक महीना से थोड़ा ज्यादा चला था, और ड्यू टू इलेक्शन वो बीच में उसको रोकना पड़ा। हमारा म्यूजिक का कोर्सेस है वो हमारा इतना ही है।
0: जैसे कि मैंने पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि आपने हर बार बहुत ही सुंदर तरीके से डांस स्टेप्स नए नए अपनी तरीके से क्रिएटिविटी दिखाते हुए बहुत ही सुंदर तरह से दर्शाते हैं, तो इसमें क्या आप सबके योगदान रहते हैं या फिर किसी एक के कोरियोग्राफी होते हैं? ये सवाल मैं उर्गेनला मुझे आपसे करना चाहूंगी।
3: इसमें एक ही व्यक्ति का योगदान नहीं होते, इसमें हम सभी जो जो मेंबर्स है, सदस्य है, वो सभी मिलके हम स्टेप्स निकलते हैं, डांस स्टेप्स, उसके बाद हम सभी डिस्कस करके उसके ऊपर में काम करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम लोग एक वीक जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम जाके परफॉर्म करते हैं उसको।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि हमने देखे हैं कि हमारे मनपा जनजाति के जो गीत एक समय पे बहुत ही मशहूर हुआ करता था, बहुत ही लोकप्रिय हुआ करता था, लेकिन आज ऐसे गीतों को लोग लगभग भूल ही चुके थे, तो ऐसे गीतों को आपने यानी किचंगा कल्चरल ट्रूप ने अपनी रचनात्मकता का उपयोग करते हुए बहुत ही सुंदर डांस स्टेप्स से सजाते हुए लोगों के सामने फिर से दर्शाने लगे हैं। और छतर जी, जैसे कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में 26 मुख्य जनजाति है, और हर जनजाति के अगर हम पारंपरिक पोशाक के बारे में बात करें तो सभी के महंगा पड़ते हैं, और विशेष रूप से हमारे मोनपा जनजाति के जो ट्रेडिशनल ड्रेस है बहुत ही महंगा पड़ता है। तो आप कहीं भी अगर जब भी परफॉर्म करते हैं तो आप हमारे पारंपरिक पोशाक में ही परफॉर्म करते हैं, तो उस समय उन सारे चीजों का प्रबंध कौन करते हैं?
1: जी, हमारा जो ये चेयरमैन है टेंशन लेंडुप सर, तो वो अपना जो लेवल बेस्ट देते हैं कि हमारा जितना भी कॉस्ट्यूम हो तो वो अच्छा हो। उसके बाद अभी जो एक्स फॉर्मर MLA सिंगटेशी सर ने हमें बहुत कुछ कॉस्ट्यूम दिया है। उसके बाद जो हम लोग का जब भी कुछ ऑनरियम मिलता है तो उससे थोड़ा सा ऑनरियम जो है वो हम लोग रखते हैं अपने ड्रेस को रिपेयर, या कहीं पे कुछ अर्जेंट हमें आकर कुछ खरीदना होता है तो उससे हम लोग ले लेते हैं।
0: और मेरा अगला सवाल उर्गेनला मुझे आपसे है, तो आप सभी अभी बहुत ही कम उम्र के हैं, किसी ने हाल ही में अपने पढ़ाई पूरे की है, तो कोई अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कल्चरल ट्रूप से जुड़ने से क्या लाभ आपको नजर आ रहा है, और इस ट्रूप में शामिल होते हुए आने वाले समय में क्या कार्य क्षेत्र आपको नजर आ रहे हैं?
3: जी, जैसे कि एक महान व्यक्ति ने कहा था कि पावर इज यूथ एंड यूथ इज यू। हम ऐसे विश्वास रखते हैं, हमें ऐसे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि हम अगर यूथ ऐसे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे एक्टिविटीज में बिजी हो जाएंगे, इसलिए हमारे दिमाग जो मतलब कुछ गलत कामों में नहीं लगेगा, हमें कुछ अच्छे पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगे ये सब काम से। जैसे कि एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। सो हमें लगता है कि अगर हमारे दिमाग जो खाली रहेंगे और हम कुछ भी एक्टिविटीज में भाग नहीं लेंगे, हमारे दिमाग जो एक नेगेटिव कुछ सोचने लग जाएंगे और हमारे रास्ते भटक जाएंगे, इसलिए हम कुछ ऐसे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें कुछ पॉजिटिव वाइब्स और साथ में हमारे मन भी अच्छा लगेगा, और ये फिजिकल हेल्थ और ये सब भी फिट रहेंगे।
0: और साथ साथ आपको हमारे मोनपा समाज से जुड़े हुए गीत और नृत्य के जानकारी तो आपको मिलेंगे ही, और साथ साथ सकारात्मक विचार से हमेशा जुड़े रखेंगे, है ना? और फिलहाल आप किचंगा कल्चरल ट्रूप में कुल 39 सदस्य है ना, और अगर कोई आपके जैसा युद्ध आपसे जुड़ना चाहेंगे किचंगा

0: कल्चरल ग्रुप से जुड़ना चाह रहे हैं तो उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो किस तरह से होंगे, सिदर जी से जानेंगे फिर।
1: जी, हमारा जो केचेंगा कल्चर ग्रुप है इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ नहीं होता। दिल से हमारे साथ अगर जुड़ना चाहता है तो ही और शी इज मोस्ट वेलकम इन अवर केचेंगा कल्चर ग्रुप। क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं और कोई ऐसे ही बैठा हुआ है फी नोस हाउ टू डांस और सिंग, हमारे साथ आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑडिशन या ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमारा जो जितना भी आर्टिस्ट है वो सब सभी यहाँ पे केचेंगा कल्चर ग्रुप में आकर उसके बाद हमारे साथ यहाँ पे नाच के उसके बाद धीरे धीरे करके वो कुछ सीखता है।
0: जी जी, और वैसे आप सब बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं और आपके कल्चरल ट्रूप बहुत ही, मैंने जैसे शुरुआत में कही थी कि बहुत ही लोकप्रिय है, हर कोई पसंद करते हैं। तो आप हमारे तवांग जिले से बाहर भी जाकर परफॉर्म करते होंगे, तो जैसा कि हमें देदल जी ने बताया कि हमारे तवांग के भूतपूर्व विधायक श्री सिंटाशी जी ने आपको आर्थिक सहायता की थी, तो उनके अलावा अब तक आपको किसी और, यानी डिपार्टमेंट ऑफ कार्मिक एंड आध्यात्मिक है और आर्ट एंड कल्चर का डिपार्टमेंट है और आर्मी अथॉरिटी है, या किसी से भी आपको अब तक आर्थिक किसी से सहायता मिले? क्योंकि आप जब तवांग जिले से बाहर परफॉर्म करने जाते हैं तो उस समय ट्रांसपोर्टेशन और एकोमोडेशन की जरूरत पड़ती है।
2: अभी तक जो हमारे जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट हमें किया है वो हमारे एक्स एमएलए श्री सिंटाशी जी ने किया है, और उसके अलावा हमारे जो केचेंगा वेलफेयर एसोसिएशन है उनके जो सीनियर जो रैंक होल्डर्स है उन्होंने हमें काफी सहायता किया है और काफी हमें जागरूक किया है और सपोर्ट किया है इस सब में। और हमें क्योंकि ऐसा जरूरत नहीं पड़ा कि हमें उनके पास जाना पड़े, जब भी अगर हमें जरूरत पड़ता है तो हम जरूर से आशा करते हैं कि वो हमारा जरूर हमारे हेल्प करेंगे इन सभी चीजों में, जैसे कि हमारे फॉर्मर एमएलए ने हमें किया था। क्योंकि पहले जब केचेंगा कल्चर ट्रूप फॉर्म हुआ था तब हम काफी छोटे थे, तो अभी इस केचेंगा कल्चर ट्रूप को फॉर्म हुए 10 साल हो चुके हैं, तो मैं तो शायद केचेंगा कल्चर ट्रूप का 8 बैच में हूँ, तो मुझे इतना खास नहीं पता इन सब के बारे में। जब जितना मैंने सुना है, लेकिन जब ये केचेंगा कल्चर ट्रूप फॉर्म हुआ था तब हमारे जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, जैसे आपने कहा कि काफी एक्सपेंसिव होता है, इन्हें मेंटेन करना मुश्किल होता है, तो ये सब हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट है जैसे कि हमारे केचेंगा कल्चर सेक्रेटरी मिस्टर लोबसांग सेदर, तो उन्होंने काफी कुछ झेला है। उसके बाद आज जो केचेंगा कल्चर ग्रुप है इन लोगों की वजह से, जो हमारे जो अभी हम ड्रेस पहनते हैं, अभी हमारे जो ट्रेडिशनल ड्रेस आए हैं वो पूरा हमारे इन्हीं की बदौलत है, जो इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाकर अपने ट्रेडिशन को प्रमोट कर और जहां जहां में हमें ऑनेरियम मिलते हैं उनमें से थोड़ा सा भाग रखकर और बाकी बांट कर, तो वही ऑनेरियम से हम अपने ड्रेस लेते हैं और उसमें मेंटेनेंस होता है, तो इसी में हमारा हो जाता है। तो हमें इतना जरूरत नहीं पड़ा कि किसी के सामने जाकर रिक्वेस्ट या अप्रोच करना पड़े। अगर इन फ्यूचर हमें पड़ता है तो हम जरूर से आशा करते हैं कि वो हमारा हेल्प करेंगे, जैसे हमारे फॉर्मर एक्स एमएलए मिस्टर सिंटाशी जी ने किया था। थैंक यू।
0: तो लगभग अब तक सारे चीजों का जो मैनेज आप अपने आप ही करते हो, यानी किचन का कल्चरल ट्रूप अपने आप ही करते हो ना? तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं अगला सवाल फिर सेदर जी से करूंगी कि आपने अब तक बताया कि हमारे अब तक के चर्चे में गीत और नृत्य के परफॉर्मेंस से जुड़े हुए ही हुए थे, तो इसके अलावा आप 39 मेंबर कुल किचन का कल्चरल ट्रूप में फिलहाल है, तो इसके अलावा समाज से जुड़े हुए कुछ अन्य गतिविधियां आपने किए हैं?
1: जी, डांस के अलावा हमारे जो केचेंगा कल्चर ग्रुप है तो वो सोशली बहुत एक्टिव रहता है, और हमारा जो केचेंगा जो कॉलोनी है तो उसको कभी कभी जब सोशल सर्विस करना होता है तो उसमें हमारा जो आर्टिस्ट है बहुत अच्छा से भाग लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अभी तवांग जो है टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, तो हमारा जो आर्टिस्ट है वो जो यहाँ पे अभी जो हमारा बुद्धा स्टेचू आई लव तवांग करके है, तो उसमें हमारा जो लोकल ड्रेस होता है वो टूरिस्ट लोगों के लिए उसको पहन के उसके साथ फोटो खिंचवा के ऐसे करके हम लोग भी प्रमोशन करते हैं अपना जो कल्चर है। तो का जो फीस भी है वो एकदम एफोर्डेबल है, 100 करके हम लोग करते हैं। अपना जो केचेंगा कल्चर ग्रुप के आर्टिस्ट हैं वो सबको मैं बोलना चाहूंगा कि हमारा जो सोशल एक्टिविटीज और हम लोग आगे बढ़ाकर, क्योंकि हमारा जो अभी यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं, उसके बाद जो हमारा यहाँ का जो लीडर सीनियर मंक्स है तो उनसे एडवाइस लेकर हम अपना जो तवांग है उसमें सोशल सर्विस भी कुछ करना चाहेंगे। के बाद जो हमारा जो यहाँ पे तवांग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें भी हमारा जो आर्टिस्ट है उन्होंने भी अपना जो ब्लड है डोनेशन किया है, तो उसके लिए भी मैं अपना जो आर्टिस्ट है उन सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा।
0: जी, और मुझे तो आप लोगों से बातें करते हुए बड़े ही आनंद आ रहे हैं, लेकिन इस समय हमारे साथ हमारे बहुत सारे श्रोताएं जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है तो वे शायद थक गए होंगे, तो क्यों ना हम आपके पसंद के गीत

0: मिलकर सुनते हैं, है ना? तो आप अपने पसंद के एक गीत की फरमाइश कर सकते हैं।
1: तो हम सबका फरमाइश है कि हमारा जो अरुणाचल का जो सॉन्ग है अरुण किरण शीश भूषण, तो इसको हमारे जो लिसनर्स हैं उनके लिए एक बार प्ले कर दीजिएगा
0: जी।

0: फिर मेरा अगला सवाल आपसे ये है देदुल जी, अभी तक आपके किचिंग कल्चरल ट्रूप ने जितने भी परफॉर्मेंस कार्यक्रमों में परफॉर्म किए हैं वे सारे शायद तवांग में ही किए होंगे, तो तवांग से बाहर जाकर आपने किसी जगह पर परफॉर्म किए हैं या फिर आने वाले समय में करने की योजनाएं हैं?
1: जी जी, हमने हमारे जो कल्चर जो परफॉर्मेंस है वो तवांग से बाहर भी किए, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी किए, जैसे इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी जो उनका सिल्वर जुबली हुआ था जो ईटानगर में हुआ था, तो उसमें हमने भाग लिया था जो हमें काफी अच्छा लगा और उसमें हमें बहुत एक्सपीरियंस मिला। और उससे पहले हमने वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में भी परफॉर्मेंस दिया था, जब उस नए मोनेस्ट्री की जो प्रेयर हॉल का जो इनोग्रेशन था तब हमें वहां में काफी जानकारी मिले थे। उसके बाद हमने वहां में इंटरनेशनल जो दूसरे कंट्री से आर्टिस्ट आए थे, जो हमारे नेबर कंट्री है भूटान से जो आर्टिस्ट आए थे उनसे भी इंटरेक्शन हुआ, तो इससे हमारा काफी जो नॉलेज है उस हमें मिला है उससे। और आगे जो हमारा प्लानिंग है, हमें शायद टूटिंग में एक प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया गया है, तो उसके लिए भी हम अभी देख रहे हैं।
0: जी, फिर मैं अगला सवाल उर्गेन लहमुजी आपके तरफ आ रही हूँ, और आप एक युवा कलाकार है तो आपके जैसा हमारे समाज में और भी बहुत सारे युवा होंगे जिनके पढ़ाई जो है पूरे हो गई है लेकिन उनके पास फिलहाल करने को कुछ नहीं रहता है, और आपने थोड़ी देर पहले कही थी कि खाली दिमाग शैतान का घर, शायद उनके साथ ऐसा होते होंगे कि उनके पास करने को कुछ नहीं रहता है तो वो कुछ न कुछ गलत सोचते होंगे या फिर गलत रास्ते अपना लेते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देंगे? क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता होंगे कि हमारे समाज में जो युवा है उनके बीच नशीले पदार्थों का सेवन करना जो है बहुत ही आम सी बन चुकी है विशेष रूप से, और कुछ लोग जो है हद से ज्यादा शराब का सेवन करते हैं।

0: या फिर कोई गैम्बलिंग की तरफ चले जाते हैं, तो उनको आप संदेश दीजिए।
1: सो मैं युवाओं को बोलना चाहूंगी कि अगर आपका पास कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसे यूटिलाइज करना जानना चाहिए। आपको मतलब नशीली चीज और ये ड्रग्स ये सबसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये नशीली चीज भी बहुत खराब होते हैं, उनको लत लग जाते हैं। तो इसलिए हमें ये सबसे दूर रहना चाहिए और हमें ऐसे अपना समय को व्यक्त करना चाहिए जिसमें हमें कुछ अच्छा पॉजिटिव वाइब्स दे और हमें कुछ उससे सीख मिले। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि आप नशीले चीजों से दूर दूर रहिए और ऐसे कुछ अच्छा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कीजिए जिससे आपको अच्छा नॉलेज गेन हो और आपको कुछ अच्छा पॉजिटिव वाइब दे।
0: क्योंकि हमारे समाज में फिलहाल ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। विशेष रूप से लोग ड्रग्स का सेवन बहुत करते हैं, तो उस दौरान उनकी जो जिंदगी है खराब होने की तरफ चलते हैं।
2: तो जैसा हमारे उर्गेन लामू ने बताया, मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो ड्रग्स है वो एक कैंसर डिजीज की तरह है जो क्योर करना बहुत मुश्किल होता है। तो कोई कोई तो उससे बाहर भी नहीं निकल सकते, तो अल्टीमेटली वो अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर चलते हैं। तो ड्रग्स अब्यूज भी इसी तरह ही

0: विशेष रूप से लोग ड्रग्स का सेवन बहुत करते हैं तो उस दौरान उनकी जो जिंदगी है खराब होने की तरफ चलते हैं।
1: तो जैसा हमारे उर्गेन लामू ने बताया, मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो ड्रग्स है वो एक कैंसर डिजीज की तरह है जो क्योर करना बहुत मुश्किल होता है, तो कोई कोई तो उससे बाहर भी नहीं निकल सकते, तो अल्टीमेटली वो अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर चलते हैं। तो ड्रग्स अब्यूज भी इसी तरह ही एक कैंसर डिजीज की तरह है जिसे क्योर करना काफी मुश्किल है। अगर एक बार यूथ को इसका लत लग जाए तो काफी मुश्किल होता है उससे बाहर निकलना, और जिसके कारण जो उनकी जो फैमिली बर्डन होता है तो फैमिली पर भी काफी इफेक्ट होता है, उनके फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें भी इफेक्ट होता है, उनके जो पीस जो फैमिली पीस होता है उस पर भी इफेक्ट होता है। तो अगर हमारे जो फैमिली के सदस्यों में कोई भी ऐसा एक होता है जो ड्रग्स लेते तो उससे काफी हमारे फैमिली पे इफेक्ट होता है। तो अगर हम इन कल्चर एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा करिकुलर पे फोकस करें तो हमारे माइंड डाइवर्ट रहता है, और जिससे हमें हमारे जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, अपॉर्चुनिटीज, हमारे कॉन्फिडेंस, वो सब में जो बढ़ोतरी होते हैं, तो उन सभी की वजह से हमें इस खराब लत पे हम नहीं चलते जिसके। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे तवांग में जो नए यूथ है, ना सिर्फ तवांग ही नहीं, पूरे अरुणाचल, पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड में जो यूथ है, मैं इन सभी से यही कामना करना चाहूंगा कि वो अपने आप को किसी अच्छे चीज पे ही फोकस रखे, जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलर चीज होते, पढ़ाई है इम्पोर्टेंट है, हमारे जो एजुकेशन है वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, पर उससे हटकर हमें एक्स्ट्रा करिकुलर पे भी ध्यान देना चाहिए ताकि हम इन जैसे ड्रग एब्यूज, एल्कोहल एडिक्शन, स्मोकिंग, गैम्बलिंग, इन सभी चीजों पे हमारा ध्यान ना जाए और हम अपने आप को दुरुस्त रख सके और अपने फैमिली पर बर्डन ना बने और अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। थैंक यू
0: जी। क्योंकि आप अगर हमारे आकाशवाणी तवांग को सुन पाते हो तो आपने शायद सुने होंगे कि इस बारे में, यानी ड्रग अवेयरनेस को लेकर हमने आज से पहले भी कई बार कई लोगों के साथ चर्चा किए हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रिप्रेजेंटेटिव के साथ, पुलिस पर्सनल के रिप्रेजेंटेटिव के साथ, एनजीओस के साथ, बहुत सारे इसके बारे में चर्चा किए हैं। तो हमें लगता है क्योंकि हम जितना हो सके इसके बारे में अवेयरनेस लोगों तक जाते रहे ना। अब मैं सिदर जी से जानूंगी कि आपके केचंगा कल्चरल ट्रूप के अब तक के जो आपने गतिविधियां किए हैं परफॉर्मेंस के बारे में या बहुत सारी चीजों के बारे में आपने हमारे श्रोताओं को बताए हैं, लेकिन जो अभी आने वाले समय में केचंगा कल्चरल ट्रूप और क्या क्या अच्छे अच्छे चीजें करने वाले हैं?
2: तो हमारा जो केचंगा कल्चर ट्रूप है तो उसका जो फर्दर प्लानिंग्स बहुत है, जैसे कि हमारा जो अभी अरुणाचल में जितना भी टाइप है जैसे कि निशी, गालो आदि, अपतानी, तो इनका भी जो ड्रेस है तो उस सब का भी हम लोग प्लानिंग करके यहाँ पे जो हमारा केचंगा कल्चर ट्रूप है वो होल अरुणाचल को प्रमोट करना चाहेगा, क्योंकि हमारा सिर्फ मोनपा कम्युनिटी को ही हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आगे बढ़कर हमारा जो अरुणाचल का जो ट्राइब है उसको भी हम लोग आगे बरकरार रखेंगे, क्योंकि एस हमारा जो तवांग है बहुत अभी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है, तो हमारा जो अरुणाचल का जितना भी लोग यहाँ पे तवांग में घूमने आते हैं तो उनको भी मतलब हम जो अपना, अगर जैसे कि कोई अपतानी ट्राइब से कोई यहाँ पे आया है तो हम लोग अपना जो अपतानी अगर डांस कल्चरल हम लोग उनको दिखाएंगे तो उनको भी लगेगा कि दे आर एट होम, इसलिए हम लोग का ऐसे हम लोग प्लानिंग कर रहा है। उसके बाद और हमारा जो जितना भी हमें अभी स्टूडेंट है या कोई ऐसे ही बैठा है, अनएम्प्लॉयमेंट बैठा है, तो उनको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप यहाँ पे केचंगा कल्चर ट्रूप में ज्वाइन करें, यू आर मोस्ट वेलकम, कि आप लोग यहाँ पे आके अपना जो थोड़ा पॉकेट मनी है, उसके बाद जो अपना जो माइंड है उसको बिजी रख के, अपना जो शेड्यूल है उसको बिजी रख के हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अभी जो समय ऐसा आ गया है कि जो नौकरी है ये सब भी थोड़ा मुश्किल है, तो जो जो यहाँ पे बैठा है, कोई कोई यहाँ पे मतलब बस्ती से तवांग में रेंट में बैठा हुआ है, तो उनको भी थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प भी मिल जाएगा। तो ऐसा आशा करता हूँ कि मोर एंड मोर पार्टिसिपेंट्स विल बी जॉइनिंग अस इन आवर केचंगा कल्चर ट्रूप।
0: जो युवा, उनके पास अभी लीजर टाइम है, कुछ करने को नहीं है, तो आपसे अगर जुड़ सकते हो तो उनके जो अंदर टैलेंट है उसे उपयोग में लाने का अवसर भी उसको मिलेंगे और साथ साथ रोजगार भी मिलेंगे। सबसे खास बात जो हमारे जो कल्चर से जुड़े हैं, गीत है, नृत्य है और पोशाक के बारे में बहुत सारे प्राप्त करने को मिलेंगे, है ना।
2: तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का टाकू सर है, टोका चेयरमैन, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर डिप्रो सर, उसके बाद जितने अन्य लीडर जो हमारे तवांग के हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारा जो केचंगा कल्चर ट्रूप है तो उनको और बढ़ावा दे, और कहीं भी जब भी फंक्शन हो तो हमें उसमें अपॉर्चुनिटी दे, ताकि हमारा जितना भी यहाँ का तवांग का यूथ है तो वो भी

0: हमारे साथ बने रहेंगे और जो हमारा रिच कल्चर है उसको शोकेस करते रहेंगे और हमारा जो ऑनरेबल MLAs है उसके बाद ZPC एंड ZPMs सर मैडम सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम यूथ को और इंकरेज करें और जितना हो सके इंकरेज करें ताकि हम लोग जो अपना कल्चर है उसको शोकेस करके पूरा जो हमारा भारत है हमारा जो इंडिया है सभी में हम लोग अपना जो मोनपा कल्चर है उसको हम लोग शोकेस कर सके।
1: जी जी, तो हमें हमारे आज की यह चर्चा यहीं पर समाप्त करने होंगे क्योंकि इस कार्यक्रम में समय की पाबंदी है। तो आज आप सभी ने आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में अपने समय निकालकर आए और हमारे श्रोताओं को किचिंगा कल्चरल ट्रूप से जुड़े हुए बहुत सारे जानकारियां दी। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू।
2: कार्यक्रम युवावाणी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केचेंगा कल्चरल ट्रिप के चंद सदस्यों से एक बातचीत। विषय था केचेंगा कल्चरल ट्रिप के गठन के उद्देश्य, अब तक की उपलब्धियां एवं भविष्य की योजनाएं। श्रोताओं, तो इसी के साथ ही युवाओं के लिए हमारा मासिक कार्यक्रम युवावाणी अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 4:30 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम से पहले आइए सुनते हैं यह संदेश।
3: जिले की अपनी एक पहचान है, हर परंपरा, हर अनसुनी कहानी, हर छिपी हुई मंजिल भारत का एक अनमोल रत्न है। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल जो देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स और हर जिले की अनूठी पहचान को राष्ट्रीय मंच देती है। शुरुआत 2 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से, अब आपकी कहानी भी पूरे देश तक पहुँच सकती है। Google Play Store और Apple App Store पर Waves OTT इंस्टॉल करें, खुद को रजिस्टर करें और My Waves सेक्शन के प्रोग्राम्स में जाकर Gems of India चुनिए, अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करिए और अपनी एंट्री सबमिट कर दीजिए। चुनिंदा कहानियों को मिलेगा Waves OTT और प्रसार भारती के राष्ट्रीय मंच पर स्थान, क्योंकि भारत की असली पहचान सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि उसके गांवों, कस्बों और जिलों की उन कहानियों में बसती है जिन्हें दुनिया तक पहुंचने का इंतजार है। अगर आपके पास अपने क्षेत्र की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, स्थानीय परंपराओं, प्रेरणादायक व्यक्तित्वों या अनसुनी कहानियों को दुनिया के सामने लाने का जुनून है तो यही है सही अवसर। आइए अपने जिले की पहचान को एक नई उड़ान दें और सिर्फ पहचान ही नहीं आपके हुनर को मिलेगा सम्मान भी। जिला स्तर पर 50,000 रूपए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर 2,00,000 रूपए और राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक के पुरस्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर क्रिएटर की अपनी कहानी, हर कहानी एक राष्ट्रीय मंच की हकदार।
2: श्रोताओं, अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे पंडित DK दत्तर जी से वायलिन वादन। श्रोताओं, तो लीजिए पेश है कार्यक्रम राग रंग।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंडित डीके दत्तर जी से वायोलिन वादन। श्रोताओं, तो इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम रागरंग अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 4:45 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

यह आकाशवाणी है, अभी मुरी शोभा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को करेंगे संबोधित। वरिष्ठ पत्रकार पायल मेहता का मुंबई में निधन। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रक्षा मंत्री ने व्यक्त किया शोक। सेमीकंडक्टर से जुड़ा 5वां सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत तेलंगाना में आयोजित किए जा रहे हैं कई विशेष कार्यक्रम। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एशियाई खेल 2026 से महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर एला वेमिन, वला रिवन, सोनम नास्कर और विदर शाह के विनोद को दी बधाई। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, करेला काल और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT द्वारा किया जा रहा है। सत्र के दौरान केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति BV नागरत्ना, NGT के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और भारत के सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता के उपस्थित रहने की संभावना है। वरिष्ठ पत्रकार पायल मेहता का आज सुबह मुंबई में निधन हो गया है। वे 46 वर्ष की थी। मुंबई दौरे पर आए श्रीमती मेहता को सुबह अचानक अस्वस्थ महसूस होने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पायल मेहता के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सेमीकंडक्टर से जुड़ा 5वां सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन का विषय था सिलिकॉन टू सिस्टम्स, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। 3 दिन के सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शकों ने हिस्सा लिया। इनमें लगभग 300 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी, 52 देशों के प्रतिनिधि और 150 से अधिक वक्ता शामिल हुए। जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और स्वीडन के मंडपों पर और 12 राज्य मंडपों में सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला के पहलुओं को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 40,000 लोगों ने भागीदारी की।

सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने सेमीकंडक्टर नीति निर्माण से लेकर इसके वाणिज्य उत्पादन तक भारत की प्रगति की चर्चा की थी। श्री मोदी ने युवा चीप डिजाइनरों और छात्रों से बातचीत की और मोहाली की सीडीआईएल सेमीकंडक्टर तथा सूरत की सूची सेमीकॉन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। सम्मेलन के दौरान 56 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा सेमीकंडक्टर डिजाइन निर्माण आधुनिक पैकेजिंग उपकरण और सामग्री पावर इलेक्ट्रॉनिक और यांत्रिक मेघा से जुड़ी

विषप नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में अत्याधुनिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल है। यह आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जो स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। कल इस अभियान के नए चरण को राष्ट्रव्यापी स्तर पर शुरू किया गया था। सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र हमें परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं उन्हें दोबारा यह करने की जरूरत नहीं है। बायोमेट्रिक आधार प्रमाणन का काम सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना पर समाज के सांस्कृतिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने विज्ञान और अध्यात्मक में समन्वय स्थापित कर सनातन संस्कृति के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया। गृहमंत्री ने कहा कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा के मंत्र के साथ उन्होंने लाखों लोगों को जनसेवा और सामाजिक सुधार के लिए प्रेरित किया। श्री शाह ने कहा कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की का जीवन और उनके मूल्य राष्ट्र और समाज के लिए हमेशा मार्गदर्शक बने रहेंगे। भारतीय वायुसेना जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर जापान वायु आत्मरक्षा बल के साथ द्वीपक्षीय वायु अभ्यास वीर रक्षक 2026 का संचालन कर रही है। 14 दिवसीय यह अभ्यास मंगलवार को समाप्त होगा। यह अभ्यास उन्नत परिचालन मिशनों और दोनों वायुसेनाओं के बीच व्यापक पेशेवर समन्वय पर केंद्रित है। भारतीय वायुसेना स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस SU-30 MKI और राफेल सहित विभिन्न प्रकार के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों के साथ भाग ले रहे हैं। जापान अपने F-2A लड़ाकू विमान के साथ इस अभ्यास में भाग ले रहा है। अभ्यास वीर रक्षक 2026 सामरिक दक्षता और एरोस्पेस परिचालन तालमेल को बढ़ाकर भारत और जापान के बीच गहरी रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मित्रता और रणनीतिक सहयोग के बंधन को भी मजबूत करता है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने एशियाई खेल 2026 में महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर एना वेनिल वलारिवन, सोनम मास्कर और विदर्शा के विनोद को बधाई दी। डॉ. मनिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में विजेताओं को बधाई दी और पूरे भारतीय दल को भविष्य में और भी गौरवशाली क्षणों की कामना की। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम माही तमिलनाडु पुदुचेरी

0: कराईकल और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ और अन्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की उम्मीद है। वहीं दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और अगले दो दिन तक साफ आसमान रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज जापान में भारतीय समुदाय के साथ संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम नागोया में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय दल का उत्साह बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था। श्री मांडविया ने भारतीय खिलाड़ियों के समर्थन के लिए जापान में रह रहे भारतीय समुदाय की सराहना की। उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी भारतीयों को जरूरत होती है, भारतीय प्रवासी समुदाय हमेशा उनके समर्थन में आगे आते हैं। महिला क्रिकेट में भारत ने जापान में आयोजित एशियाई खेल 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रनों से हरा दिया। शेफाली वर्मा के 49 गेंदों में बनाए गए पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय शतक में भारत की 114 रनों की शानदार जीत का मार्ग प्रशस्त किया। उपकप्तान स्मृति मेघाना ने 19 गेंदों में 37 रन बनाए जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 40 रन बनाए। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani, the news read by Shubhashachi Bhattacharya. President Draupadi Murmu will address the valedictory session of the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi this evening. The two-day conference is being organized by the National Green Tribunal, NGT. During the session, Indian Minister of Power Manohar Lal, Supreme Court Judge Justice B.V. Nagaratna, Chairperson of NGT Justice Prakash Srivastava and Solicitor General of India Tushar Mehta likely to be present. Rashtriya Sankalp Samaro is being organized at various locations in the country to eradicate drug abuse among youth as part of Nasha Mukt Yuva Abhiyan. The Ministry of Youth Affairs and Sports has said that Rashtriya Sankalp Samaro is being organized across 1,067 locations in the country. The Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat 100 Weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan is witnessing nationwide youth mobilization. The ministry added that this program will be organized across 471 district My Bharat offices along with 596 locations of partner organizations. The samaro aims to bring the campaign's message directly to young people through Nasha Mukt Pledge, signature campaign, thematic street plays, slogan writing and youth-led discussions. In Mumbai, two people were killed and four others injured after an electric shock at a temporary drinking water stall near a Ganesh Utsav Mandal in Kalachoki early this morning. The injured were taken to nearby hospitals. One of the injured is reported to be in critical condition while three others are reported to be stable. In another incident in the state, three people were killed and one injured after a BMW car met with an accident on Mumbai's coastal road early this morning. The injured has been admitted to hospital. The Indian Air Force is conducting bilateral air exercise Bir Guardian 2026 with the Japan Air Self-Defense Force to bolster defense collaboration at the Air Force Station in Jodhpur. The 14-day exercise, which will be concluded on Tuesday, focuses on advanced operational missions and extensive professional interactions between the two air forces. The IAF is participating with a diverse mix of frontline combat aircraft, including the indigenous light combat aircraft Tejas Su-30 MKI and the Rafale, while Japan is participating with F-2A fighter aircraft. On to sports. In Asian Games 2026, India's campaign continues strongly on the two in Japan today. Indian shooters secured two silver medals in Nagoya. India's Ilavanil Valarivan clinched a silver medal in the women's 10-meter air rifle event at the Games. Earlier, India secured the silver medal in the women's 10-meter air rifle team event with Ilavanil Sonam Maskar and Virasa Vinod combining to deliver the country's first medal of the Games. President Draupadi Murmu has congratulated the team on winning the medal in a social media

南无阿弥陀佛。

Jesus,

南无。

Chibin Juman Shibin

Deva do me jingo nyan sila gayan sipa sundo jawa dadu de.

Thank you.

Jawa Nina

Thank you.

Jambo, Jambo, Jambo,

Jambaganazo,

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा के पहले भाग में आइए सुनते हैं एक जरूरी सूचना। दोरजी खांडू राजकीय महाविद्यालय तवांग के शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए गेस्ट फैकल्टी के 5 पदों पर वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। एक एक पद अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, अर्थशास्त्र और भूगोल विषय के लिए है। इंटरव्यू 25 सितंबर 2026 और 26 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे से प्रधानाचार्य कक्ष दोरजी खांडू राजकीय महाविद्यालय तवांग में आयोजित होगा। 25 सितंबर को अंग्रेजी, हिंदी और इतिहास विषयों के उम्मीदवारों का इंटरव्यू होगा। 26 सितंबर को अर्थशास्त्र और भूगोल विषयों के उम्मीदवारों का इंटरव्यू होगा। उम्मीदवारों को इंटरव्यू शुरू होने से कम आधा घंटा पहले महाविद्यालय में आना, अपना नाम पंजीकृत करना अनिवार्य है। आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास संबंधित विषयों में न्यूनतम 55% अंकों के साथ मास्टर्स डिग्री तथा यूजीसी या सीएसआईआर द्वारा आयोजित नेट, स्लेट या सेट होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए मास्टर्स डिग्री पर 5% अंकों की छूट होगी। यूजीसी नियमों के अनुसार पीएचडी धारक उम्मीदवारों को नेट, स्लेट या सेट की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगी। उम्मीदवार की अधिकतम आयु 37 वर्ष होना चाहिए। एपीएसटी उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। गेस्ट फैकल्टी के लिए 1 घंटे की कक्षा के लिए 1,500 रूपये मानदेय दिया जाएगा। मानदेय की अधिकतम सीमा 50,000 रूपये प्रतिमा होगी। यह नियुक्ति अस्थायी होगी और यूजीसी 2019 के दिशा निर्देशों के अनुसार 13 जून 2027 तक प्रभावी रहेगी। चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी होने के 4 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। अधिक जानकारी के लिए दोरजी खांडू राजकीय महाविद्यालय तवांग के कार्यालय से संपर्क करें। सूचना समाप्त हुआ। कार्यक्रम जरोखा के अगले भाग में आइए जानते हैं हमारे केंद्र से आज एवं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही पलों में यानी संध्या के 6:20 पर मुनपा कार्यक्रम जेदन लरीम, शाम 7 बजे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। आज शाम 7

बजकर 10 मिनट पर कवालियों पर आधारित कार्यक्रम महफिले कवाली, 7:25 पर कार्यक्रम समुदाय गीत एवं गीत पाठ, आज शाम 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर, आज रात्रि 8 बजे फरमाइश गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत, इसके अंतर्गत आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश के चंद सदाबहार पुराने नगमों का आप आनंद ले पाएंगे, आज रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज 9 रात्रि 9 बजे। श्रोताओं, ये तो थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब हम आपको अवगत करवाते हैं कल यानी 21 सितंबर 2026 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर के 2 बजे मीडिया न्यूज के साथ, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, तथा दोपहर समाचार 2:15 पर। कल दोपहर 3:30 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम मेरी बात, कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग, कल शाम 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा, कल शाम 7:10 पर ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण, कल रात्रि 8 बजे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत, इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश के चंद सदाबहार पुराने नगमों का, कल रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज 9 रात्रि 9 बजे। श्रोताओं, ये तो थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:16 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा मुनपा में। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा भाग ले रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सली कमांडर ब्रिजेश गंझू मारा गया है। ये मुठभेड़ उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ हुई। ब्रिजेश गंझू को गोपाल सिंह भोक्ता के नाम से भी जाना जाता था। वो प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी का शीर्ष कमांडर था। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज मेरठ में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के एयर शो का अवलोकन किया। टीम ने कल पहली बार उड़ान भरी और अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2 दिनों के दौरान 1,00,000 से अधिक लोगों ने इस प्रदर्शन को देखा। इनमें विद्यार्थी, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक भी शामिल थे। श्री सेठ ने सूर्य किरण टीम के साहस और समर्पण की सराहना की। मत्स्य पालन विभाग कल कोलकाता में मत्स्य पालन विकास पर एक समीक्षा बैठक आयोजित करेगा। बैठक की सह अध्यक्षता मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी करेंगे। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1,000 से अधिक ड्रोन दागे, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। मेयर सोबियानिन के अनुसार पूरे मॉस्को क्षेत्र में हुए इन हमलों में 2 लोगों की मौत हुई और 20 घायल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अमरीका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेनिल वला

0: cold. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi congratulated Elavenil Velarivan on her individual silver. Both also congratulated the women's 10-meter air rifle team for opening India's medal account at the Games. Meanwhile, Indian women's cricket team has entered the final of the Asian Games. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 7:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कवालियों पर आधारित कार्यक्रम महफिले कवाली। आज इसके अंतर्गत आप आनंद लेंगे नुसरत फतेह अली खान साहब से चंद कवालियां। श्रोताओं, तो लीजिए पेश है कार्यक्रम महफिले कवाली।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में चंद कवालियां। श्रोताओं, तो इसी के साथ ही कवालियों पर आधारित कार्यक्रम महफिल कवाली अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबांग केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर।

यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 7:25 होने वाले हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम समुदाय गीत एवं गीत पाठ। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे कवि एच दुकुखाई के लिखे सिंधी भाषा में एक गीत का पाठ। श्रोताओं, तो लीजिए पेश है कार्यक्रम समुदाय गीत एवं गीत पाठ।

प्यारे बच्चों, ये है सिंधी में देशभक्ति का गीत। शीर्षक है हे मुंहिंजो वतन। मुखड़ा हे मुंहिंजो वतन, मुंहिंजो वतन, मुंहिंजो वतन, हे मुंहिंजो वतन, मुंहिंजो वतन, मुंहिंजो वतन। मिसरीअ खां मिठेरो, माखीअ खां मिठेरो, मिसरीअ खां मिठेरो, माखीअ खां मिठेरो, कुर्बान तहें वतन तां, कयां पंहिंजो तन बदन। कुर्बान तहें वतन तां, कयां पंहिंजो तन बदन। हे मुंहिंजो वतन, मुंहिंजो वतन, मुंहिंजो वतन। पहला अंतरा, मिठड़े वतन खां, मिठड़े वतन खां आऊं रखी कीब न वारियां। मिठड़े वतन खां आऊं रखी कीब न वारियां, जेकी हुजेम बेई वरी कीन पचारिया। जेकी हुजेम बेई वरी कीन पचारिया, दिल में हमेशा शाल रहे देश जी लगन। दिल में हमेशा शाल रहे देश जी लगन। हे मुंहिंजो वतन, मुंहिंजो वतन, मुंहिंजो वतन। दूसरा अंतर है, जे चाह अथम कात वतन शाद दिसां

0: जे चाह अथम का त वतन शाद दिसा मां आजाद दिसा मां सदा आबाद दिसा मां आजाद दिसा मां सदा आबाद दिसा मां मस्ती इन्हीं में आहे दुखायल जी दिल मगन मस्ती इन्हीं में आहे दुखायल जी दिल मगन ही मुझो वतन मुझो वतन मुझो वतन मिसरी का मिठेरो माखी का मिठेरो ही मुझो वतन मुझो वतन मुझो वतन।
1: अब श्री कानू घोष इस गीत की धुन तुमको सिखाएंगे।
2: प्यारे बच्चों, एक गीत मैं और मेरे साथी श्री फारूक पहले गाकर सुनाएंगे, तुम सब उसी धुन में गाओगे। अब सुनो। 1 2 1 2 3

समुदाय गीत एवं गीत पाठ के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कवि एच दुखुखाई के लिखे सिंधी भाषा में गीत का पाठ। श्रोताओं, तो इसी के साथ ही यह कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम से पहले आइए आनंद लेते हैं इस खूबसूरत से गीत का।

आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:45 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: देवभूमि ने कहा है कि हाल के समय में आए कई प्राकृतिक आपदाओं से यह साफ हो गया है कि जलवायु पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई जरूरी है। आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया भर के वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि जलवायु से जुड़ा खतरा बहुत गंभीर हो गया है। उन्होंने इस समस्या को रोकने और इससे निपटने के लिए स्थानीय क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सभी संबंधित पक्षों के बीच सक्रिय सहयोग को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। शहरी मामलों भूमि प्रबंधन और नागरिक उड्डयन मंत्री बालू राजा ने आज अनिनी में डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में शहरी विकास और भूमि प्रबंधन विभागों की समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में विधायक मोपिन मीहू और जिला अधीक्षक यशवंत मीणा भी मौजूद थे। बैठक के दौरान संबंधित विभागों ने जिले में शहरी विकास और भूमि प्रबंधन से जुड़े चल रहे कामों, विकास की पहलों और मुख्य मुद्दों की स्थिति के बारे में जानकारी दी। मंत्री ने अलग अलग पहलों की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों के साथ सुनियोजित शहरी विकास, बेहतर भूमि प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं के बुनियादी ढांचे में सुधार जैसे मामलों पर बातचीत की। फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के पुलिस सुपरिंटेंडेंट जॉन पारा ने राज्यभर के सभी फायर स्टेशनों के इंचार्ज अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे आने वाले सर्दियों के मौसम को देखते हुए 24 घंटे ऑपरेशन के लिए तैयार रहें। सभी फायर स्टेशन इंचार्ज अधिकारियों को यह पक्का करने का निर्देश दिया गया है कि फायर टेंडर हमेशा पानी से भरे रहे और किसी भी तरह की इमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए उनमें हर समय आग बुझाने के सभी जरूरी उपकरण मौजूद हो। इस निर्देश को बेहद जरूरी बताया गया है, जिसमें इमरजेंसी के समय असरदार तरीके से निपटने के लिए लगातार तैयारी और आग बुझाने के संसाधनों की तुरंत उपलब्धता पर जोर दिया गया है। इस निर्देश का मकसद अरुणाचल प्रदेश में आग से सुरक्षा की तैयारियों को मजबूत करना और सर्दियों के मौसम में इमरजेंसी के तुरंत समय और असरदार प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। तवांग के विधायक नंगी सेरिंग ने आज साल्ट ट्रैक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह एक हेरिटेज पहल है जो उन मोनपा पूर्वजों को सम्मान देती है जिन्होंने कभी तिब्बत से नमक और दूसरी जरूरी चीजें लाने के लिए ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों को पार किया था। हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए विधायक ने साल्ट ट्रैक को एक ऐतिहासिक पहल बताया जो नई पीढ़ी को उनके पूर्वजों के संघर्ष, हिम्मत और समझदारी से फिर से जोड़ती है। उन्होंने युवाओं से अपनी विरासत पर गर्व करने और मोनोल की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। नागुला के पास रुपसांग झील से शुरू हुए इस कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें भारतीय सेना के अधिकारी, छात्र, युवा और ट्रैकिंग के शौकीन शामिल थे। अरुणाचल प्रदेश स्टेट स्काउट एंड गाइड्स फेलोशिप को इंडियन स्काउट्स एंड गाइड फेलोशिप की ओर से बेस्ट स्टेट के लिए डीएस महाजन एक्सीलेंस अवार्ड 2025-26 दिया गया है। यह अवार्ड केरल के कन्नूर में इंडियन स्काउट एंड गाइड फेलोशिप की 36वीं जनरल असेंबली के दौरान दिया गया। यह सम्मान अरुणाचल प्रदेश स्टेट स्काउट्स एंड गाइड फेलोशिप के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और यह दोस्ती, सेवा, अनुशासन और भाईचारे जैसे स्काउटिंग और गाइडिंग के आदर्श को बढ़ावा देने में उनकी कोशिशों को मान्यता देता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस साल 1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी रिफिल के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को लोग सब्सिडी के साथ विनियमित खुदरा बिक्री मूल्य पर रिफिल बुक करने के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा करना होगा। बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण यह सुनिश्चित करता है कि सब्सिडी वाले एलपीजी केवल वास्तविक और योग्य परिवारों तक पहुंचे। प्रत्येक कनेक्शन को आधार प्रमाणित उपभोक्ता से जोड़ने से वाणिज्य और औद्योगिक उपयोग के लिए सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों के विचलन को रोकने में मदद मिलेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Shabashachi Bhattacharya with regional news. President Draupadi Murmu has said numerous natural disasters in recent times have made it clear that robust climate

रीजनल न्यूज आपकी सेवा में, ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है और आप हमसे जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 7:55 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम देशभक्ति गीत, आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे दिल जले फिल्म से कुमार सानू और आदित्य नारायण की आवाजों में एक गीत, और इस गीत के गीतकार हैं जावेद अख्तर तथा संगीतकार हैं अन्नू मलिक।

कुमार सानू और आदित्य नारायण के गाए इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम देशभक्ति गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 8:02 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइश गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्म गीत। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप आनंद लेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश के चंद सदाबहार पुराने नगमों का। आइए इन्हीं नगमों का आनंद लेते हैं और आगे बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। यह फरमाइश हमें प्राप्त हुई है नलेश्वर नगर नरवाल महाराष्ट्र के पीएस नवगर, निर्मला नवगर और विशाल नवगर जी की ओर से, और साथ ही मलकापुर के नारायण इंगल, सोपन तयादी और आशीष मुरेकर जी की ओर से। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए पेश है जीत 1972 फिल्म का यह गीत, जिसे स्वर दिया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। इस गीत की गीत रचयिता है आनंद बख्शी तथा संगीत संयोजन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है जलालाबाद वेस्ट के सुरेश गनेजा, पूनम गनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा जी की ओर से और साथ ही असम के हितेंद्र दास जी की ओर से। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए पेश है लव स्टोरी फिल्म का यह गीत जिसे स्वर दिया है अमित कुमार और लता मंगेशकर ने। इस गीत के गीत रचयिता है आनंद बख्शी तथा संगीत संयोजन है आर डी बर्मन।

श्रोता, इस वक्त बाना ले रहे हैं कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश के चंद सदाबहार पुराने नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। हमारे इस कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए आइए आगे बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। और यह फरमाइश हमें प्राप्त हुई है वदी खेरा पंजाब के मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोरा जी की ओर से। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए पेश है एक फूल दो माली फिल्म का यह गीत, जिसे स्वर दिया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। इस

पेश है अंदाज फिल्म का यह गीत जिसे स्वर दिया है किशोर कुमार ने। इस गीत के गीत रचयिता है हसरत जयपुरी तथा संगीत संयोजन है शंकर जयकिशन।

श्रोताओं, अभी आप फरमाइश हमें प्राप्त हुई है मेरठ के दिग्दर्शन गौर और कविता गौर जी की ओर से, और साथ ही निमानाबाद जिंद हरियाणा के जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर जी की ओर से। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए।

श्रोताओं, कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश हमें प्राप्त हुई है रिगनी छत्तीसगढ़ के दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा जी की ओर से। आप दोनों की फरमाइश पर लीजिए पेश है अनारकली फिल्म का यह गीत, जिसे स्वर दिया है हेमंत कुमार ने। इस गीत के गीत रचयिता है डजेंद्र कृष्ण तथा संगीत संयोजन है रामचंद्र।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। दोबारा सुनिएगा 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत की बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसके साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्म गीत यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबंग केंद्र है। समय रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज 8 रात्रि 9 बजे। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: सटीक निशानों की बदौलत पदक तालिका में लगाई है भारत की हाजिरी। इसके बाद जानेंगे सुचिका तारियाल की कहानी, जिन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भारत के लिए पदक पक्का करके जापान में रचा है इतिहास। वही हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम एक बार फिर आ पहुंची है एशियाई खेल के फाइनल में। जानेंगे आज खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले का पूरा हाल, और इसके साथ ही कार्यक्रम में चर्चा होगी भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम के दमदार प्रदर्शन की, तथा बैडमिंटन और टेबल टेनिस से आई खुशखबरियों की। तो जापान में 20वें एशियाई खेलों का आगाज हो गया है, और इसके साथ ही आगाज हो गया है दिन ब दिन नए खिलाड़ियों और सितारों के उदय का। इसी कड़ी में भारतीय निशानेबाजों ने आज अपने सटीक निशानों से जापान के आइची नगोया में एशियाई खेलों की पदक तालिका में भारत का पदार्पण कराया। एलावेनिल वलारिवेन ने आज महिलाओं के व्यक्तिगत और टीम 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया।
1: Silver medal. Put your hands together for what is a very proud moment for the entire nation. Valarivan, 252.4. Second silver of the day. Second medal of these games for this lady.
2: You have seen the focus in her face while shooting. Now you see her smiling. Congratulations to her.
3: भारत की एलावेनिल वलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक हासिल किया। 2025 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता एलावेनिल ने फाइनल में 252.4 अंक हासिल किए। स्पर्धा का स्वर्ण पदक जापान की हिनाता ताइची ने रिकॉर्ड 253 अंकों के साथ जीता। इस शानदार उपलब्धि पर एलावेनिल ने अपने अनुभव कैसे साझा किए, आइए सुनते हैं।
4: For that one given shot. I'm very thankful to the entire government, to the state government for implementing such schemes that help the athletes grow. With all the schemes that have been coming up, we definitely can say that India is rightly towards being called a sporting nation, and we are just miles away from achieving our epitome. I think it was more about following my technique, following my process, and be the absolute best that I can do for that one given shot. I'm very thankful to the entire government, to the state government for implementing such schemes that help the athletes grow. With all the schemes that have been coming up, we definitely can say that India is rightly towards being called a sporting nation, and we are just
3: इससे पहले भारत ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। एलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को पहला पदक दिलाया। सोनम ने व्यक्तिगत क्वालिफाइंग में चौथे स्थान पर रहते हुए भारत के लिए 634.1 अंक हासिल किए, जबकि ओलंपियन एलावेनिल 633.5 अंकों के साथ सातवें स्थान पर रही। चीन 1904.2 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि भारत ने 1897 अंकों के साथ अपना दूसरा स्थान हासिल करते हुए 2026 एशियाई खेलों में अपना पहला पदक अर्जित किया। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: तो पदार्पण हो चुका है भारत का, और इसके बाद एक के बाद एक आज भारत ने कई खेल स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने लिए पक्के कर लिए हैं। और इन तमाम परिणामों के बीच आज के दिन की मुख्य सुर्खी रही हरियाणा के रोहतक से आने वाली मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी सुचिका तारियाल। सुचिका ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एमएमए में भारत के लिए पहला पदक पक्का कर दिया है। 36 वर्षीय सुचिका ने महिलाओं के ट्रेडिशनल कैटेगरी की 60 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में मंगोलिया की अतला चिनमेग बेगलमा को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सुचिका कल स्वर्ण पदक की ओर कदम बढ़ाने के इरादे से सिंगापुर की तेव हुई हूं के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। इससे पहले आज इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर सुचिका ने क्या कहा, सुनते हैं।
5: ये मेडल मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है और मेरे कोचेस ने मेरे ऊपर बहुत हार्ड वर्क करा है। मेरे फैमिली ने मेरे ऊपर बहुत एक्सपेंसिव चीजें मेरे ऊपर खर्च करी है और मुझे सपोर्ट किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर मेरा मेडल आएगा तो इंडिया के लिए एमएमए में ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी।
0: तो एक शानदार खिलाड़ी जिसने अपने शानदार प्रदर्शन से, एक ऐसा खेल जो भारत में परंपरागत नहीं है, जहां पे आपको जूडो, टाइकोंडो, काफी हद तक बॉक्सिंग, कई विदेशी खेल विधाओं का एक साथ संयोजन देखने को मिलता है, और विश्व के सबसे कठिन खेलों में शुमार, और इतनी ही कठिन है

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विशेष शुक्ला। हम एक बार फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का हर अपडेट, खेल के मैदान की हर खबर और एशियन गेम्स के अधिक क्लेवर के साथ। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर, जहां पर आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे जापान के नगोया में जारी 20वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की, जहां भारतीय महिला निशानेबाजों ने अपने

0: सुचिका की कहानी। वो 36 वर्षीय हैं, आज से 24 साल पहले जब वे महज 12 वर्ष की उम्र में थी, तो एक छेड़छाड़ की घटना के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि अब मैं अपनी आत्मरक्षा स्वयं करूंगी, और स्वयं के डिफेंस के लिए उन्होंने इस खेल को सीखा। और आज जापान में जब वो भारत के लिए पदक पक्का कर रही हैं, तो कह सकते हैं कि खुद की आत्मरक्षा से लेकर के भारत का आत्मगौरव बढ़ाने तक इस खिलाड़ी ने हर मोर्चे पर अपना योगदान दिया है। विशेष एक शानदार खिलाड़ी के रूप में पिछले 5 से 6 साल में हमने सुचिका को देखा है।
1: बिल्कुल शक्ति, सुचिका का जो सफर रहा है वो बेहद शानदार रहा है। इन्होंने अपना डेब्यू 2017 में किया था, इसके बाद इन्होंने एमएमए से ब्रेक ले लिया क्योंकि इनको अपनी तैयारी के लिए समय चाहिए था। इस दौरान वे जूडो और जीजुत्सु में खेलती रहीं। 2024 में एक बार फिर उन्होंने एमएमए में वापसी करी और भारत के लिए पदक एशियन गेम्स में सुनिश्चित किया। इससे पहले वह एमएमए एशियन चैंपियनशिप में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं, साथ ही साथ जूजित्सु में एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड अपने नाम कर चुकी हैं।
0: जी बिल्कुल, और हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स में जूनियर जूडो की कोच के रूप में कार्यरत थी, और कहा जाता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं खेलनी होती थी तो अनपेड लीव लेकर के जाती थी, और ये तमाम मेडल्स और तमाम ट्रॉफियां इस खिलाड़ी ने भारत को दिए, और एक और पदक अब उनकी झोली में आने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसके बाद अब बात क्रिकेट की। एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट में गत विजेता भारतीय टीम ने बांग्लादेश को सेमीफाइनल में 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है।
2: Will this be catching practice? And that shall bring an end to Bangladesh's innings. They bundle out for 81 and India find a place in the final. The hunt for gold will continue as they'll be up against Sri Lanka in their next encounter. India win by 114 runs.
0: तो ऐसे ही एक सन्नाटे के बीच जापान में भारतीय टीम ने एक बार फिर अपनी जीत की पताका लहराते हुए फाइनल में प्रवेश किया है, और महज एक कदम दूर अपना खिताब बचाने से भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश को 196 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम महज 81 रन पर सिमट गई, और मुकाबले में स्मृति मंधाना ने T20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मांधना ने आज एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। स्मृति मांधना ने बांग्लादेश के खिलाफ एशियाई खेलों के सेमीफाइनल में 19 गेंदों पर ताबड़तोड़ अंदाज में 37 रनों की शानदार पारी खेलकर ये उपलब्धि अपने नाम की है। उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में न्यूजीलैंड की पूर्व क्रिकेटर सूजी बेट्स को पीछे छोड़ दिया। अब उनके नाम 171 पारियों में 4,788 रन है। इस मैच से पहले सूजी बेट्स से आगे निकलने के लिए उन्हें सिर्फ 8 रन चाहिए थे। उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत करते ही 7 गेंदों में ये उपलब्धि अपने नाम कर ली। मांधना और बेट्स पहले से ही पुरुषों के T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बाबर आजम से आगे थी। सूची में मांधना के बाद सूजी बेट्स 4,758 दूसरे और पाकिस्तान के बाबर आजम तीसरे नंबर पर हैं। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो अब मंगलवार को फैसला होगा कि भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले के बाद स्वर्ण पदक किसकी झोली में आता है। और ऐसा ही शानदार प्रदर्शन किया आज भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने भी, जिन्होंने जीत के साथ अपने अभियान का आरंभ किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराया, जबकि पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को 13-1 से मात दी। महिला टीम की जीत में दीपिका ने 8 गोल किए, वहीं पुरुष टीम की ओर से दिलप्रीत सिंह ने 4 गोल दागे।
4: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पुले के पहले मुकाबले में इंडोनेशिया को 13-1 से हराकर अपने खिताब बचाओ अभियान की मजबूत शुरुआत की। भारत ने पहले क्वार्टर में 2 गोल किए और दूसरे क्वार्टर में लगातार 5 गोल दागकर हाफ टाइम तक 7-0 की बढ़त बना ली। दिलप्रीत सिंह ने 2 गोल किए, जबकि राजेंद्र सिंह, मनदीप सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने भी गोल किए। इंडोनेशिया ने तीसरे क्वार्टर में 1 गोल किया, लेकिन भारत की ओर से दिलप्रीत ने जवाबी हमला करते हुए हैट्रिक पूरी की और बाद में अपना 4th गोल भी किया। शिलानंद लाखड़ा और सुखजीत सिंह ने 2-2 गोल किए। जुगराज सिंह ने भी गोल किया और भारत ने 13-1 से मुकाबला जीत लिया। वहीं भारतीय महिला टीम ने पूल बी के अपने पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। दीपिका ने ताबड़तोड़ 8 गोल किए, इशिका ने 3, जबकि ललथंग लुआंगी और नेहा ने 2-2 गोल किए। बलजीत कौर, नवनीत कौर, लालरेम सियामी और साक्षी राणा ने भी 1-1 गोल किया। भारत ने अपना दबदबा कायम रखते हुए हाफ टाइम तक 8-0 की बढ़त बना ली। दूसरे हाफ में भी भारतीय टीम का शानदार

0: शानदार प्रदर्शन रहा। दीपिका ने लगातार 4 गोल करके भारत की बढ़त 13-0 कर दी। अंत में अन्य खिलाड़ियों के गोल की मदद से भारत ने मुकाबला 19-0 से अपने नाम किया। इस मुकाबले के साथ गोलकीपर सविता पुनिया ने भी खास उपलब्धि हासिल की। ये उनका 320वां अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला था। इसके साथ ही वे वंदना कटारिया के साथ भारत की सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई। महिला टीम का अगला मुकाबला 21 सितंबर को इंडोनेशिया से होगा, जबकि पुरुष टीम 22 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ उतरेगी। स्पोर्ट्स कैन के लिए प्रशांत कुमार।
1: तो जारी है तमाम जीत का सिलसिला और पदक पक्के करने की दौड़। और अब बात बैडमिंटन और टेबल टेनिस की कर ली जाए, जहां भारतीय महिला टीम ने आज बैडमिंटन कोर्ट पर अपने शानदार प्रदर्शन से क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं महिला टीम ने भी अपने ग्रुप एफ के दोनों मुकाबले जीत करके कल अपना तीसरे मुकाबले की ओर स्थिति को मजबूत कर लिया है। विशेष बैडमिंटन और टेबल टेनिस को लेकर क्या अपडेट है?
2: शक्ति, बैडमिंटन में आज भारतीय महिला टीम ने डोमिनेटिंग अंदाज में जीत दर्ज करी है। पीवी सिंधु ने पहले, उन्नति हुड्डा ने दूसरे और तन्वी शर्मा ने तीसरे गेम में लगातार दो दो सेट जीतकर मुकाबले को अपने नाम किया है। अब भारतीय टीम का जो मुकाबला है 22 सितंबर को जापान से होगा। अगर टेबल टेनिस की बात करें तो भारतीय टीम ने पहले इंडोनेशिया से मुकाबला किया, जहां 3-0 की जीत दर्ज करी। सथिया ज्ञान शेखरन, मानव ठक्कर और मानुष शाह ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। साथ ही साथ महिला टीम ने भी इंडोनेशिया को 3-0 से हराया, जहां श्रीजा अकुला, दिया चिताले और यशस्वी ने इंडोनेशिया की टीम को कोई भी मौका नहीं दिया। हालांकि एक हार का सामना भी करना पड़ा है पुरुष टीम को, ईरान से, जहां पर मानुष शाह, मानव ठक्कर और हरमीत देसाई अपना अपना मुकाबला हार गए।
1: जी, तो ये तो था आज के खेलों का पूरा हाल, और इसके एवज में भी कई और प्रतियोगिताएं भी हुई जहां भारतीय खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन दिए हैं। अब सबकी नजरें अगले दिन पर होंगी। कल के दिन भारत की नजरें किन खिलाड़ियों पर और किन खेलों पर टिकी होंगी?
2: कल के प्रमुख मुकाबलों की अगर बात करें शक्ति, तो शूटिंग में भारतीय खिलाड़ी कल सुबह प्रतिस्पर्धा करेंगे। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में हिमांशु ढिल्लों की अगुवाई वाली टीम पर भारत के समर्थकों की नजरें रहेंगी। वहीं स्कीट में मेंस और वुमेन्स इंडिविजुअल प्रतियोगिताएं होंगी। टेबल टेनिस में महिला टीम कल पाकिस्तान से मुकाबला करेगी। वहीं सुचिका तारियाल 60 किलोग्राम एमएमए में मुकाबला जीतकर कम से कम रजत पदक पक्का करने का प्रयास करेंगी। महिला हॉकी में भारतीय टीम का मुकाबला सुबह 9:30 इंडोनेशिया से होगा और भारत के जांबाज कबड्डी खिलाड़ी भी जापान से भिड़ते नजर आएंगे। इसके बाद सितारों से सजी बैडमिंटन पुरुष टीम, जिसमें लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय, सात्विक चिराग, वो बांग्लादेश के सामने चुनौती पेश करेंगे। दोपहर में पुरुष टेबल टेनिस पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला करेगी और महिला टीम बांग्लादेश के सामने चुनौती पेश करेगी।
1: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि एक बहुत व्यस्त शेड्यूल खिलाड़ियों के लिए भी और उनके साथ साथ तमाम दर्शकों के लिए भी। और आपने बैडमिंटन टीम का जिक्र किया, जिसने इसके पहले एशियाई खेलों में जो चीन में हुए थे होंगजोंग में, वहां पे सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी का फाइनल मुकाबला, जिसने भारत को पहली बार बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जिताया था, और लक्ष्य सेन का कांस्य पदक। तो कह सकते हैं कि ये खिलाड़ी भी कल से अपने अभियान की शुरुआत करने के लिए उत्सुक होंगे और उत्साहित होंगे।
2: बिल्कुल शक्ति, ये सभी खिलाड़ी कल भारत को एक पदक की नई उम्मीद देने के लिए तैयार हैं और अपने शानदार प्रदर्शन से कल कई पदक सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे।
1: जी बिल्कुल, कई पदकों पर नजर होगी। हालांकि आज भारत के लिए एक छोटी सी दुर्भाग्यशाली खबर यह रही कि टैगबॉल में जहां भारत को आज कांस्य पदक की उम्मीद थी, भारत उसमें नाकाम रहा और कह सकते हैं कि सेमीफाइनल में वो दौड़ भारत हारता हुआ नजर आया।
2: जी बिल्कुल शक्ति, टैगबॉल जो कि एक नया खेल है भारतीय खिलाड़ियों के लिए, तो उसमें भारत को एक निराशा हाथ लगी है, लेकिन ये एक नया खेल है तो हमें उम्मीदें आगे जरूर रहेंगी।
1: जी बिल्कुल, एक नया खेल जहां भारतीय खिलाड़ियों से उम्मीदें होंगी। और श्रोताओं, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय, अपने सुझाव आप हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पे भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन

0: रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। मॉस्को सहित रूस के विभिन्न इलाकों में 1000 से अधिक ड्रोन दागे, एक तेल शोधन संयंत्र को भी निशाना बनाया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वहीं पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।
1: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडायवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड्स स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को क्षेत्रों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
0: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण में आम लोगों और युवाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है। ये पहला अवसर है जब किसी द्विपक्षीय अभ्यास के तहत जापानी लड़ाकू विमान भारत की धरती से उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इसे भारत जापान रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
2: The Japanese fighters have operating from Indian soil for the first time.
3: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और समय हम ये अवसर गंवा बैठे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझा

0: साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
1: पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज।
2: उधर जापानी वायुसेना प्रमुख जनरल मोरिता ने भारतीय मेहमान नवाजी की प्रशंसा की और तेजस को भारत के मेक इन इंडिया अभियान तथा तकनीकी नवाचार का एक बेहतरीन प्रतीक बताया। 9 सितंबर से शुरू हुआ वीर गार्जियन अभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्रजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रूपये का इनाम घोषित किया था।
4: ब्रजेश गंजू करीब 2 दशक से फरार था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले समेत 50 से अधिक मामले दर्ज थे। इनमें नागरिकों और पुलिसकर्मियों की कथित हत्या के मामले भी शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मुठभेड़ में शामिल ATS टीम के लिए 2 लाख रूपये के इनाम की घोषणा की है। ब्रजेश गंजू पर घोषित 30 लाख रूपये के इनाम में झारखंड पुलिस ने 25 लाख और NIA ने 5 लाख रुपए की राशि रखी थी। महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और समाज के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे अत्याधुनिक सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्रों की। इन केंद्रों में देश विदेश के बड़े सम्मेलन, प्रदर्शनियां और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये आधुनिक परिसर भारत के मजबूत होते बुनियादी ढांचे और वैश्विक स्तर पर बढ़ती उसकी क्षमता को दर्शाते हैं।
5: भारत मंडपम और यशोभूमि भारत के विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन परिसर हैं। इन्हें भारत को माइस यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि का उद्घाटन किया था। इसके कन्वेंशन सेंटर में मुख्य सभागार, ग्रैंड बॉल रूम और 13 बैठक कक्ष समेत कुल 15 कन्वेंशन कमरे हैं। इनमें एक साथ करीब 11,000 प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता है। भारत मंडपम को प्रधानमंत्री ने जुलाई 2023 में राष्ट्र को समर्पित किया था। यहाँ G20 शिखर सम्मेलन और हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। भारत मंडपम के बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल में कुल 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। यह क्षमता ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस की बैठने की क्षमता से भी अधिक है। भारत मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा था कि इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों को भी सुविधा मिलेगी।
6: भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एग्जीबिटर्स को मदद करेगा। भारत मंडपम देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। भारत मंडपम हमारे स्टार्टअप की शक्ति को शोकेस करने का माध्यम बनेगा। भारत मंडपम हमारे सिनेमा जगत, हमारे आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस का साक्षी बने। भारत मंडपम हमारे हस्तशिल्पियों, कारीगरों, बुनकरों के परिश्रम को प्लेटफॉर्म देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने वाला है।
5: आज भारत मंडपम और यशोभूमि दो

0: दोनों ही देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के सबसे बड़े केंद्रों के रूप में उभर चुके हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने मेरठ में आयोजित दो दिवसीय एयर शो में शानदार हवाई प्रदर्शन किया। टीम के 9 हॉक MK-132 विमानों ने एक साथ उड़ान भरते हुए रोमांचक प्रदर्शन किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एयर शो देखा और सूर्य किरण टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है।
2: सूर्य किरण एरोबेटिक जो टीम है उसका अद्भुत साहस और भारतीय वायुसेना का पराक्रम तो दुनिया लोहा मानती है और दुनिया के 800 जगह इन्होंने शो किए हैं। हम सब प्रेरणा लेते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। वही मोटिवेशन भारत की सेना को हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, जिनका हमेशा रहता है कि कैसे भारतीय पूरे डिफेंस सेक्टर को इंडिजिनस करना, उनको मजबूत करना।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन में बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। एक रिपोर्ट।
3: मेयर सोबियानिन के अनुसार मॉस्को क्षेत्र में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 20 अन्य घायल हो गए। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई तरह की मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में यूक्रेन में ही बनी फ्लेमिंगो और पेलिकन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। पिछले सप्ताह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया था कि दोनों पक्ष बुनियादी ऊर्जा ढांचों पर हमला न करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके बावजूद रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले अब भी लगातार जारी हैं। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: रूस में ये नया हमला ऐसे समय में हुआ है जब वहां 3 दिवसीय संसदीय चुनावों का आखिरी चरण जारी था। इस बीच यूरोप के वरिष्ठ अधिकारियों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेलिन वलारेवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने इसी प्रतियोगिता में महिला टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। एलावेलिन वलारेवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को यह पदक दिलाया। उधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और तन्वी शर्मा की भारतीय महिला टीम ने बैडमिंटन में प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तारियाल ने पारंपरिक श्रेणी के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया और हॉकी में भी भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने आज अपने अपने मैच जीते। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान की वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. President Draupadi Murmu calls for stronger climate action and global cooperation to tackle rising natural disasters, addresses conference on future of environment and climate dynamics in New Delhi. India and Japan air chiefs take Tejas sorties during joint air exercise in Jodhpur. IAF Chief AP Singh says first ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil marks major milestone in defense ties. Naxal commander carrying 30 lakh rupee bounty killed in encounter with Uttar Pradesh anti-terrorism squad in Varanasi. Ukraine fires over 1,000 drones at Russia in largest ever attack, including hundreds at Moscow oil refinery hit. And at Asian Games, India bagged 2 silver medals in shooting. Women's cricket team reaches final and badminton team enters quarterfinal. Men's and women's hockey teams begin campaigns with wins in Japan. And now the news in detail. President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent time underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The president was addressing the valedictory session of the two-day conference on the future of environment and climate dynamics organized by the National Green Tribunal in New Delhi this evening.
5: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनके यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
4: President Murmu said climate change is creating imbalances in various aspects of human life, including biodiversity, water availability, and land resources.
5: Climate change मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है. Biodiversity loss, water stress, और land degradation इससे गहराई से जुड़े हैं. Water stress वाले क्षेत्रों में farm ponds स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं. ये न केवल वर्षा जल को क्षेत्रों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं. इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है.
4: The president said a well-structured framework of policies and actions is essential to effectively address such a complex challenge and must ensure the active participation of not only governments and legal experts, but also the communities most affected by climate change. Indian Air Force Chief Air Chief Marshal AP Singh and Japan Air Self-Defense Force Chief of Staff General Takehiro Morita flew together in India's indigenous light combat aircraft Tejas during a formation sortie in Jodhpur today. The flight by the air chiefs of both nations comes as the Indian Air Force and Japan Air Self-Defense Force are conducting the joint air exercise Veer Guardian 2026 in Jodhpur. This is the first time that Japanese fighter aircraft are operating from the Indian soil as part of a bilateral exercise, further deepening the defense partnership between both the countries. Talking to media in Jodhpur after the sortie, Air Chief Marshal Singh said first ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil marks major milestone in bilateral defense ties.
6: The Japanese fighters have operating from Indian soil for the first time is a great milestone in the history of our relationship. I very clearly remember in Tarang Shakti 24, your team was here. I had come as the vice chief, met them all. But unfortunately, your aircraft could not ferry because of bad weather in the southeastern part of Asia. And we missed the opportunity that time. But I'm very happy that we have caught up this time. This reflects a deepening dimension of our special strategic and comprehensive partnership between the two countries.
4: The Japanese Air Chief appreciated the warm hospitality extended by the Indian side and described the Tejas as a symbol of India's technological innovation and the country's Make in India initiative.
7: I am grateful for the invaluable opportunity to fly on the Tejas. As an aircraft born from indigenous defense capabilities, Tejas stands as a symbol of India's technological innovation and embodies Make in India initiative. While flying, I found myself reflecting on the efforts of many people, both in the military and industry, who contributed to its development.
4: The 14-day exercise, which will conclude on Tuesday, focuses on advanced operational missions and extensive professional interactions between the two air forces. The exercise involves a diverse mix of Indian Air Force frontline combat aircraft, including the indigenous light combat aircraft Tejas, Su-30 MKI, and Rafale, while Japan is participating with the F-2A fighter aircraft. Surya Kiran aerobatic team of the Indian Air Force delivered a breathtaking aerial display featuring 9 Hawk MK-132 aircraft in close formation during an air show held at Meerut in Uttar Pradesh. The two-day air show took off yesterday when Surya Kiran team captivated spectators with a breathtaking display. The defense